ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। अब आज की बाकी खबरें समाज फरमाइए। रूस की गैर मुल्की इंटेलिजेंस सर्विस SVR के डायरेक्टर ने एतराफ किया है कि उन्होंने मॉस्को में अमरीकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर से मुलाकात की है। उन्होंने इस मुलाकात को मामूल की बात करार दिया। SVR के डायरेक्टर सरगेई नारिशकिन ने जुमेरात को सहाफ़ियों से इन इत्तलात के बारे में बात की कि CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने रूसी दारुलहुकूमत का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहों के दरमियान मुलाकातें, चाहे वो बिलमुशाफा हों या ऑनलाइन, उनके काम का हिस्सा हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि रेडक्लिफ के साथ मुलाकात सिर्फ एक बाकायदा वर्किंग मीटिंग थी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट पॉलिटिको ने इस मामले से वाकिफ ज़राए का हवाला देते हुए खबर दी है कि CIA के डायरेक्टर ने मॉस्को में रूसी हुक्काम को खबरदार किया है कि वो अमरीका के नेटो इत्तेहादियों, ख़ास तौर पर बाल्टिक रियासतों एस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया के साथ तनाज़ा ना बढ़ाएं। टोक्यो में अराजी इंतहाई महंगी होने के सबब कंटेनर में डाटा मराकज़ का क़याम AI यानी मसनू जहानत के बढ़ते हुए इस्तेमाल को जगह फराहम करने का एक हल है। NTT दोकोमो बिजनेस और टेपको पावर ग्रिड ने जुमेरात को प्री फैब्रिकेटेड डाटा मरकज की नकाब कुशाई की। वो टोक्यो के ओता वार्ड में पहला यूनिट नसब करने और इसे अगले साल के मौसम खजा में ऑपरेशनल करने का इरादा रखते हैं। ये 6 मीटर लंबा स्ट्रक्चर सर्वर और उसके आला कारकर्दगी के हामिल, लेकिन गर्मी पैदा करने वाले सेमीकंडक्टर्स को ठंडा रखने के माया कूलिंग सिस्टम से लैस है। NTT दोकोमो बिजनेस के मात्सू बायाशी ओसामू ने कहा, एक नए सेंटर को फाल करने में कम से कम 5 साल या यहां तक के 8 से 10 साल भी लग जाएंगे, जिसमें एलिवेटर्स भी शामिल हैं, लेकिन ये मुद्दत AI की तलब की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए कंटेनर में कायम किए जाने वाले डेटा सेंटर के फवायद जल्द ही आश्कार हो जाएंगे। इन कंपनियों का कहना है कि टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इलाके में डेटा सेंटरों के लिए ज़मीन का हुसूल मुश्किल तर होता जा रहा है, लेकिन अब भी कंटेनर के अंदर ऐसे मराकज़ कायम करने की गुंजाइश मौजूद है। टोक्यो टॉय शो का आगाज़ जुमेरात को हो गया है, जिसमें हज़ारों मसनूआत नुमाइश के लिए रखी गई हैं और इनमें से बहुत से खिलौने समाजी रुझानात की अकासी करते हैं। ये इवेंट जापान के सबसे बड़े तजारती शोज़ में से एक है। मुंतज़मीन का कहना है कि तकरीबन 35,000 अशिया की नुमाइश के लिए 180 से ज़्यादा कंपनियाँ और तंजीमें शिरकत कर रही हैं। एक खिलौना सरमायाकारी पर मबनी बोर्ड गेम है। खिलाड़ी हिस्स सोना या क्रिप्टो करेंसी के बराबर कार्ड जीतने के लिए गोटी चलाते हैं। खिलाड़ी कीमत में इजाफे या मुआशी बदहाली जैसे वाकयात से भरे खानों के गिर्द घूमते हैं। एक मुकर्ररा मालियत के असासे जमा करने वाला खिलाड़ी फातह कर

0: हार पाता है। एक और खिलौने में एक सुपरमार्केट में सेल्फ चेक आउट, कैश के बगैर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अदायगी और दीगर उमूर की नकाली की गई है। इवेंट के एक अहदेदार का कहना है कि बच्चों तक में समाजी रुझानात की अकासी करने वाले वैल्यू एडेड खिलौने मकबूल हैं। जापान टॉय एसोसिएशन के फुजी दायसुके ने कहा, आजकल बच्चे ऐसी चीज़ों से खेलना पसंद करते हैं जो वो अपने वालिदैन को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं और वो सोशल मीडिया पर मकबूल हो रहे हैं। ऐसे खिलौने खूब फरोख्त हो रहे हैं। ये नुमाइश कारोबारी इदारों के लिए जुमे तक और लोगों के लिए हफ्ते और इतवार को खुली रहेगी।
1: सामीन, इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से आज की अहम खबरें ख़त्म हुई, और मज़ीद खबरों और दीगर मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट पर तशरीफ़ लाइए।

0: फ्राई पैन में उसकी पतली तह लगाते हुए रोल किया जाता है। हतमी तौर पर यह ब्लॉक की शक्ल का होता है। अगला लफ्ज़ अमाखते, दरअसल ई इसमें सिफत अमाई यानी मीठा से बना है और ओइशी के मायनी है मज़ेदार। आज का नुक्ता दो या जायद इसमें सिफत को जोड़कर अपने तासुर का इजहार करने से मुतालिक है। ई इसमें सिफत को जोड़ने के लिए उसके आखिरी ई को हटाकर कुत्ते लगाना होगा। आज के मकालमे में अमाई और ओइशी मिलते हैं तो अमाई तब्दील होकर अमखते बनता है और उसके बाद ओइशी लगकर अमखते ओइशी बनता है।
1: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
2: अमखते ओइशी देस। कोनो तमागो याकी अमखते ओइशी देस।
1: जी सामीन, उम्मीद है आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: अब एक पार्क से मुतालिक तासुरात का इजहार करने वाला एक मकालमा सुनिए।
3: उएनो कोएन दो देशता का?
4: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देस।
0: अब इस मकालमे की तशरीह।
3: उएनो कोएन दो देशता का?
1: उएनो पार्क कैसा था?
0: उएनो कोएन यानी उएनो पार्क, ये टोक्यो में वाकई एक बड़े पार्क का नाम है और दो देशता का यानी कैसा था, ये तासुर पूछने का एक अंदाज है।
4: हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देस।
1: वसी और खूबसूरत और बहुत अच्छा था।
0: हिरोकुते, ई इसमें सिफत हिरोई यानी वसी की अगले इसमें सिफत से जुड़ने वाली शक्ल है। किरेई दे, ना इसमें सिफत किरेई ना यानी खूबसूरत की अगले इसमें सिफत से जुड़ने वाली शक्ल है। ना इसमें सिफत को अगले इसमें सिफत से जोड़ने के लिए आखिरी ना को दे में तब्दील किया जाता है। तोतेमो योकत्ता देस का मतलब है बहुत अच्छा था।
1: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
2: हिरोकुते, हिरोकुते किरेई दे, हिरोकुते किरेई दे तोतेमो योकत्ता देस।
0: अब तासुर के इजहार के कुछ और अल्फाज के साथ मश्क। फर्ज करें कि कोई शख्स आपको बिल्ली की शक्ल की कोई सजावटी चीज तोहफे में देता है। आप कहना चाहते हैं छोटा और प्यारा है। छोटा की जापानी है
2: चीसाई, चीसाई।
0: और प्यारा को कहते हैं
2: कवाई, कवाई।
0: और आखिर में मुखातिब से अपनी बात की तस्दीक के लिए ने लगाएं। सामीन कोशिश करें।
4: चीसकते कवाई देसने, चीसकते कवाई देसने।
0: अब फर्ज करें कि किसी ने जापान की ट्रेनों से मुतालिक आपका तासुर पूछा है। आप कहना चाहते हैं ये वक्त की पाबंद और बासहूलत है। वक्त की पाबंद यानी
2: सेकाकुना, सेकाकुना।
0: और बासहूलत
2: बेंडीना, बेंडीना।
0: तो आप किस तरह कहेंगे?
3: सेकाकुदे बेंडी देसने, सेकाकुदे बेंडी देसने।
1: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज के लफ्ज मकालमे में कायतों ने खाने का डब्बा निकालने के बाद इस्तेमाल किया है
5: दोजा।
0: दोजो आज के मकालमे की तरह खाना या कोई और चीज पेश करते वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा यह किसी काम की इजाजत देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
6: दोजो,
7: दोजो,
6: दोजो।
1: सामीन अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
2: दोजो।
0: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपने तासुरात का इजहार करती है।
5: ओ बेंटो दा यो, बुकु गा त्सुकुत्तान दा, दोजो।
8: किरे, सुगोई, इतादाकिमास। कोनो तमागो याकी, अमाकुते ओइशी देस।
9: काइतो वा होंतो नी ल्योरी गा जोजू दा ने।
5: बुकु शेफु नी नारिताई न दा।
9: ई ने।
10: हारुसान नो चिए बुकुरो।
1: अब हारुसान की संबील का कॉर्नर। आज का मौजू है ओहानामी यानी चेरी के फूलों का नजारा।
0: ہیرا، آپ جاپان آ کر اوہانامی سے تو یقیناً لطف اندوز ہوئی ہوں گی۔
1: جی یقیناً، موسم بہار میں خوبصورت گلابی پھولوں سے لدے چیری کے درختوں کے ساتھ چہل قدمی کرنا اور ان کے نیچے بیٹھ کر کھانا پینا بہت پر لطف ہوتا ہے۔
0: چیری کے پھول مارچ سے مئی تک جنوبی علاقوں سے شمالی علاقوں کی جانب کھلتے جاتے ہیں۔ ملک بھر کے لوگ اپنے اپنے علاقے کے پھول کھلنے کے متوقع وقت سے متعلق محکمہ موسمیات کی پیشگوئی اور کھلنے کے موجودہ مرحلے کے اعلانات کے منتظر رہتے ہیں، تاکہ اسی لحاظ سے اپنی اپنی پکنک کی منصوبہ بندی کر سکیں۔
1: تو زیادہ تر لوگ اوہانامی کے لیے کہاں جاتے ہیں؟
0: کئی لوگ اپنے اپنے علاقے کے باغات یا سڑکوں کے کناروں پر لگے چیری کے درختوں پر پھولوں کے نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ اوہانامی کے لیے مشہور مقامات کا رخ کرتے ہیں۔ ٹوکیو میں اوینو پارک اور شنجوکو گیوین نیشنل پارک مقبول مقامات ہیں۔ ان کے علاوہ دریائے سمیدا اور دریائے میگورو کے کنارے لگے چیری کے درخت بھی اوہانامی کے لیے مقبول ہیں۔ رات کے وقت برقی کمکموں سے آراستہ چیری کے درخت بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔